0: ཁྱི ཕྱད མི རྒྱུ ཁྱི ཕྱད མི རྒྱུ ཁྱི ཕྱད མི རྒྱུ ཁྱི ཕྱད མི རྒྱུ ཁྱི ཕྱད མི རྒྱུ ཁྱི ཕྱད མི རྒྱུ ཁྱི ཕྱད མི རྒྱུ ཁྱི ཕྱད མི རྒྱུ ཁྱི ཕྱད མི རྒྱུ ཁྱི ཕྱད མི རྒྱུ ཁྱི ཕྱད མི རྒྱུ ཁྱི ཕྱད མི རྒྱུ ཁྱི ཕྱད མི རྒྱུ ཁྱི ཕྱད མི རྒྱུ ཁྱི ཕྱད མི རྒྱུ ཁྱི ཕྱད མི རྒྱུ ཁྱི ཕྱད མི རྒྱུ ཁྱི ཕྱད མི རྒྱུ ली को ने ना ज्यो जी थौ नो जी मो हो ब ब जे ना हो तो थरे ते ये थौ दु नो रु सम सु सा छ वे तो वा यम प्र हो मो कम शेर का छ ये फों कर ता छि ता जे था वा क्यों ये तो कर ते के ता ता प क ना रे सो को को ये ब ते के को दर था सम न तु म रा का मुक्ति म सु को ने ना ता हो मो नि ग मे ना म वा नि ग जिम से रे ते तर यु तु ना नि हो मो डा ने को तो नि छ ने ते हा छि को हो मो डा ने तो छ तो ने ना ओया जा थम गु तो ने ना हो मो डा ने म रे तो हो ओया शवा कोचें पुता को ने ना सतम को लंती तो ने का होमो नि के शवा कोचें पुते को ने ना ता होमो ड्रने बरे तो साम के वो नि खगे नि मे के ता बिन ता खले मे के छियन क्यरखे नि ना ता हु रुंग ता वान दा सिन तो ने ना तो तरे कचा चिन रे से को ने ना कमो लखार ये कोमो छखा से रे रुंग ता वान दा सिन तो होमो डान यो के जा छि सा से रे तो जे ता रुंग सा से रे तो ता ना तेरों कौन से पास सिन ते का कौन पा हो ने ना नि छोले छ तक तम छि को जो रे नि यो कर तक बात को जो ये वाज का गुजुरे से जो तयन ते ते हाच के खे तो ने ता हो मु डा ने से जो ता छि मिन रास गो हो जने ना तेरो कार्ट तो हिया कना ना उन्या सा को ना सोना यर को ना ते ना उन्या छ जो ता वो नो हु जो मु को तो ख जा ता ता मु यान छ हु ला ता मि मे छ उन्या छ को ने ना हो छ ते का छ ता डा ने मे गो हो ओ या सा का ना सो ते ना हो छ डा ने मे गो हो ओ या श्या वा डा ने मे गो हो छु वा ना तों दु गो हो छु वा ना ति खर गो हो तन्या सुवा कुंवा ता गो मार तो गो तन्या ची पास ग त ग खछि दान या रं थू गो जी गमु स ग मा गो जी मे ह गमु स या रं थू गो जी ची पास मा गो जी मे ह दान हो मु दान ने क तों ने छिन छिन ने मा ना स न गो र र र त खेम न स थं हा थु छि स नो न स खो सम छि थ गो गो फरा छि थ गो गो ह का सु र या हर थ गो ह र छि सम छु मो तु ता गो ह छि सु र या छि थ गो र तें दम मा तु ता यी सम लु तों तों ग जा गो ह ओया पाचेन वारेन का न्यसरम को छुग्यों ज्यांग मे का तासरम को तोंग ज्यांग मे का ते तोंग ने का चिता ना थडर के जावा सोपर यो सोपर के जावा जाकारी जगला चिफते गा सना को होमोन दाने को तोंग ने यावा दब के वो ने तेरम वरे वा चेंग रेप के यो कुरु कुरु मो तोंग के जोंग ती ये यो ओया रोता बांदा सिना मे चिन ती तोंग ने का चिता नि रो तोंग रो वा जिंग तमा नि को ये नि होमोन दाने को तोंग ने ये के यो से जो तयन ते ते हर तक के नि मोर ये के मो तोंग तोंग रो न के मो के चिना हरता वन नो ने सा चिना टोंग कर गन चंबा ना ने तेरोंगी के चिता न गोंबन दबला किसा गेंबा छेता रो वी गो गन तर ते गेंबे फेरो गन इन जिक्तर के पास गन टोंग से बिन टो सुरी टोंग से बिन याला ना बा
1: रेट ओपना बा कोनी डांसिंग आ तक जवा तावारा डांसिंग आ तक जक्सिक पा थपतन जर्मन दनी ता फोमु डान्यम ई गोनो ni kachin na jing ko na ta manga sha ke yok de ta na gu chu yang gon nin dan xi pa nan ba ni ga ge ho mun dan yum ge kachin na jing manga sha ta na gu chu de rang de pe no ge ji ma lom ten nan ba zong chong ji na ra yang xie ra rang rang ge chama song da li ji ge ho mun dan yum de kachin ye su sha li rang rang ge za chang ta zo mi sa ma ma ri ni chi ra ta ji wa ma ri ni ma ndo mo yi za chang zhe kun ten bu ma yong ne na tang ནམ་མེ་ཡི་ ཇོ་ཧ་ ཆང་ ཁ་ ཆེན་པོ་ རེ་ ད་ ཁ་ཆམ་ན་ དེ་ཡོ་ ཙན་པོ་ ཡིན་ ཟེན་ སེམ་ཅན་ན་ སེམ་ཅན་ན་ གཟ་ཆང་ ཅུ་པོ་ ཡིན་ ཟེན་ གང་ཏར་ ཕོ་མུན་ རང་ཉམ་ ཡིན་ན་ ཆོག་ མན་ན་ ཆོག་ ཁྱིམ་ཆང་ ཏ་ཤེལ་ཡི་ དེ་ཡི་ ད་ན་ ཏ་ཤི་གི་ ཅུ་པོ་ རེ་ལ་ རེ་ ཏི་ན་ སུ་ནེ་ ཡུ་ཆུ་ དེ་རང་གི་